0: सावन का महीना पवन करे शोर।
1: सावन का महीना करे शोर।
0: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर। हाँ,

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. High blood pressure का ही दूसरा नाम hypertension है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में मौजूद रक्त नसों में लगातार दौड़ता रहता है और इसी रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक ऊर्जा और पोषण के लिए जरूरी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स आदि पहुंचते हैं। ब्लड प्रेशर उस दबाव को कहते हैं जो रक्त प्रवाह की जगह से नसों की दीवारों पर पड़ती है। आमतौर पर यह ब्लड प्रेशर इस बात पर निर्भर करता है कि हृदय कितनी गति से रक्त को पंप करता रहता है और रक्त को नसों में प्रवाहित होने में कितने अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार 130/80 mmHg से ज्यादा रक्त का दबाव हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आता है। हाइपरटेंशन के कारण भारत में हर साल लगभग 2.5 लाख लोग मरते हैं, जबकि विश्व भर में ये आंकड़ा करोड़ों लोगों का है। खास बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों के बावजूद खराब जीवन शैली और अस्वस्थ खान पान के चलते इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, मगर इसका सबसे ज्यादा खतरा हृदय यानी दिल को होता है। जब हृदय को संकरी या सख्त हो चुका रक्त वाहिकाओं के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो सीने में दर्द होता है। ऐसे में अगर खून का बहाव रुक जाए तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। हाइपरटेंशन के कारणों के अनुसार देखें तो हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप दो तरह का होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन ज्यादातर युवाओं को होता है और इसका कोई खास कारण नहीं होता है, बल्कि लगातार अनियमित जीवन शैली की वजह से ये धीरे धीरे समय के साथ हो जाता है। इस तरह के ब्लड प्रेशर का कारण बहुत आम होता है, जैसे मोटापा, ओबेसिटी, नींद की कमी, अत्यधिक गुस्सा, भोजन का अधिक सेवन करना, तनाव, तैलीय पदार्थ और अस्वस्थ खान पान। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो है जो शरीर में किसी रोग के कारण या किसी स्थिति के कारण हो जाता है। आमतौर पर सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारण ऐसे हैं जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, किडनी का कोई रोग, एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर, थायराइड की समस्या, अनुवंशिक कारणों से नसों में कोई खराबी, गर्भनिरोधक दवाइयों का अधिक सेवन, सर्दी, जुकाम और दर्द की दवाइयों का अधिक सेवन, शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि का नशा करने से भी होता है। उच्च रक्तचाप के प्रारंभिक लक्षण में रोगी को सिर के पीछे और गर्दन में दर्द रहने लगता है। कई बार इस तरह के परेशानी को वो नजरअंदाज कर देता है जो आगे चलकर गंभीर समस्या बन जाती है। आमतौर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं दोस्तों जो आज मैं आपको लम्हे प्रोग्राम में बताने जाने वाला हूँ। तनाव होना, सिर में दर्द, सांसों का तेज चलना और कई बार सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द का समस्या, आंखों से दिखने में परिवर्तन होना जैसे धुंधला दिखाना, पेशाब के साथ खून निकलना, सिर चकराना, थकान और सुस्ती लगना, नाक से खून निकलना, नींद ना आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना। कई बार कुछ लोगों में उच्च रक्तचाप से संबंधित कोई भी लक्षण नजर नहीं आता, उन्हें इस बारे में चेकअप के बाद ही जानकारी होती है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण दिखाई न देना किडनी और हार्ट के लिए घातक हो सकता है, इसीलिए अगर आपको लगातार थकान या आलस जैसे सामान्य समस्या भी है तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर जांच करवाएं। प्रत्येक व्यक्ति के ब्लड प्रेशर में दो माप शामिल होती है, पहली सिस्टोलिक और दूसरी डायस्टोलिक। इसे उच्चतम रीडिंग और निम्नत रीडिंग भी कहा जाता है। मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है या धड़कनों के बीच तनाव मुक्तता में अलग अलग माप होती है। आराम के समय सामान्य रक्तचाप में उच्चतम रीडिंग यानी सिस्टोलिक 100 से 140 तक और डायस्टोलिक यानी निचले रीडिंग 60 से 90 के बीच होती है। अगर कई दिन तक किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140/90 बना रहता है तब उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। अगर आप उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त है तो आपको इससे संबंधित कई खतरे हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप के कारण दिल के दौरे और दिल संबंधित बीमारियों को होने का खतरा अधिक होता है।
इसके अलावा इस समस्या से ग्रस्त लोगों को कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की भी जांच करानी चाहिए। उच्च रक्तचाप के कारण कई और बीमारियां होने की संभावना भी रहती है। हाई ब्लड प्रेशर में रोगी की याददाश्त पर असर हो सकती है, जिसे डिमेंशिया कहा जाता है। इसमें रोगी के मस्तिष्क में खून की आपूर्ति कम हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति घटती जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की रक्त वाहिकाएं संकरी या मोटी हो सकती है। इसके कारण आंखों की रोशनी कम होने लगती है, उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। ये हृदय को रक्त पहुंचाने वाले धमनियों को सख्त अथवा मोटा कर सकते हैं, जिससे उनकी चौड़ाई कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता है और एंजाइना, हार्ट डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज होने का अंदेशा काफी बढ़ जाता है। इससे हार्ट अटैक हो सकता है। वास्तव में जिस व्यक्ति को एक्यूट हार्ट अटैक आया हो, उन्हें पहले से हाइपरटेंशन होता है, जो चोरी से अचानक सामने आता है और फिर उसका इलाज किया जाता है। हाइपरटेंशन से दिल के मांसपेशियां असामान्य रूप से मोटी हो जाती है, जिसे पाए नलिया अतिवृत्त कहा जाता है, जो भविष्य में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण मौत होने का बड़ा कारक होता है। उच्च रक्तचाप हृदय पर काफी दबाव डालता है। इससे हृदय को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है। इससे दिल का आकार लगातार बढ़ता रहता है और बाद में ये कमजोर होने लगता है। यही समस्या आगे चलकर हार्ट फेलियर का कारण बनती है। सब ऑप्टिमल यानी उच्चतम रक्तचाप स्थानिक हृदयघात के 50% मामले के लिए उत्तरदायी होती है। सिस्टोलिक रक्तचाप में 20 mmHg अथवा डायस्टोलिक रक्तचाप में 10 mmHg के बढ़ावा रक्तचाप से होने वाली मौत का खतरा दोगुना कर देता है। हाइपरटेंशन के सही इलाज से इस बीमारी के व्यापक गंभीर परिणाम से बचे जा सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी से हार्ट अटैक के मामले 20-25% तक कम लाई जा सकती है। वही हार्ट फेलियर के मामले में असौतन 50% से भी अधिक तक कम किए जा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप के कारण बच्चे का विकास बाधित हो सकता है। बच्चे के लिए जरूरी विटामिन और प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इसका असर होने वाले बच्चे के वजन पर भी पड़ता है। हाइपरटेंशन के कारण गर्भनाल को नुकसान हो सकता है। कुछ मामलों में गर्भनाल गर्भाशय से अलग हो जाता है। इसके कारण बच्चे की ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है। कई बार ये काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोग के इलाज के लिए जो दवाइयां उपलब्ध होती है, उन दवाइयों के सेवन से ब्लड प्रेशर उल्टा बढ़ने लगता है। इसीलिए ऐसे मामले में किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लें। कई बार ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए दोनों तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी रोग के इलाज के भी और जीवन शैली में बदलाव के भी। ऐसी स्थिति में चिकित्सक आपको उचित सलाह दे सकता है। तो दोस्तों, यह थी हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी आज के लम्हे प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। रिपीट, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का व्यवरावार हिसाब लगाकर गृहिणियों को ये स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी ब्राह्मण ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने न केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है, ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ती। मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वो आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए ये तो एक बला ही है, बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वो यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली है। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपाकर कविता लिखा करती थी, वो भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे पसंद ही नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैं कवि हूँ, ये बात 15 बरस में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने के बगल के कोठे में तुम लोगों की गौवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नींद थी। सवेरे नौकर तरह तरह के काम करते रहते, इसलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती और मेरा मन इसे देखकर रोने लगता था। और मैं गांव गवई की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे 2 गायें और 3 बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वो बच्ची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वो सब मुझे ला देती। तब मैं मझली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है। पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, सिर्फ वेदना, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर
बड़ा आश्चर्य हुआ था। और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहाँ न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहाँ टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है, आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता। फर्श और दीवार पर काली माँ अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी, उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है, अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है, वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी दुख को पाना ही होगा, तो फिर जहाँ तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। हाँ, आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है, ये बात कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आई। घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खींच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है भला। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा, तभी से दरार शुरू हो गई।

जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई है ना? देखा तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो।

उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी। पतिव्रता। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थी मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे मन ही मन सोचती थीं कि चलो जान बची, अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थीं, वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता। और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था, इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई, लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया, शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर

के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जी जी, तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का ओर छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुसह वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी, इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजू बंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा न आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था।

दूसरे ही दिन से मैंने 25 रुपए जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है, भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली।

0: बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची, माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम्ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी थी, बोली थी, जी जी
1: मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो।
0: मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसकी यहाँ जा रही है वहाँ उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे इस तरह मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे, उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो। उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता। जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नजर में

मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार दो बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूँ जब से तुम्हारे घर आई हूँ। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुप गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा, मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा, इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला? वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, जी अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु! गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगा कर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। बिंदु!
आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है। अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं, बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं, वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहां खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूं। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है, अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागलपति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवन इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है। इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुदबुद है वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया। तुम्हारा संसार अपनी षठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों न कोई पुकारे, मैं उस अंतापुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी। ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला, क्यों। कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी। और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहां गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार, कहां गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा। कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है। ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। तरी मझली बहू तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा।
تمہاری گلی کا اب مجھے کوئی ڈر نہیں۔ آج میرے سامنے نیلا سمندر ہے، میرے سر پر آشاڑھ کے بادل۔ تم لوگوں کی ریتی نیتی کے اندھیرے نے مجھے اب تک ڈھک کے رکھا تھا۔ بندو نے آ کر کھڑ بھر کے لیے اس آورن کے چھید میں سے مجھے دیکھ لیا۔ وہی لڑکی اپنے مرتیو دوارا سر سے پیر تک میرا وہ آورن اگھاڑ دیا۔ آج باہر آ کر دیکھتی ہوں، اپنا گورو رکھنے کے لیے کہیں جگہ ہی نہیں ہے۔ میرا یہ اناہت روپ جن کی آنکھوں کو بھایا ہے، وہ سندر آج سمپورن آکاش سے مجھے نہار رہے ہیں۔ اب مجھلی بہو کی خیر نہیں، تم سوچ رہے ہوگے میں مرنے جا رہی ہوں۔ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم لوگوں کے ساتھ میں ایسا پرانا مذاق نہیں کروں گی۔ میرا بائی بھی تو میری ہی طرح ناری تھی، ان کی زنجیریں بھی تو کم بھاری نہیں تھی۔ میرا بائی نے اپنے گیت میں کہا تھا، باپ چھوڑے ماں چھوڑے، جہاں کہیں بھی جو بھی ہیں سب چھوڑے، لیکن میرا کی لگن وہیں رہے گی پربھو۔ اب جو ہونا ہے سو یہ لگن ہی تو جیون ہے۔ میں ابھی جیوت رہوں گی، میں بچ گئی ہوں، جیوت رہوں گی۔ تم لوگوں کے چرنوں کے آشرے سے چھوٹی ہوئی میں جیوت رہوں گی۔

इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा
0: 1993 फिल्म साहिबा
2: जैसे जियूंगा मैं
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार
3: नजरों से कह दो प्यार
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं लेकर यादों की महफिल।

और भाई ऐसे गीतों से तो हर किसी को आशिकी हो जाती है ना। बहरहाल यादों की महफिल कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना बरसात फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, जलाल मलिहाबादी के बोल थे और शंकर जयकिशन की यादगार बड़ी ही प्यारी सी तर्ज। चलिए आपको बता दें कि आज यादों की महफिल कार्यक्रम में गाने बज रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों से।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना हमने आपको सुनवाया आशा भोसले के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा था और फिल्म थी लाजवंती। चलिए अब यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ें। शकील बदायूनी की रचना है, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर। क्या कहता है ये गाना, आइए सुनें।

0: मतवाला जिया, आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से ये गीत। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद की तर्ज, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के युगल स्वर। लता मंगेशकर का गाया एक और गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: तो चलिए, इस संदेश के बाद अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत है, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज।

लता मंगेशकर की गायकी और अभिनेत्री नरगिस का अभिनय दोनों ही कमाल। आपको बता दें, चोरी चोरी फिल्म का ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। एक और फिल्म अभिनेत्री नरगिस की, इसमें लता मंगेशकर की आवाज है, इस गीत में राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन की तर्ज। फिल्म अदालत।

और अब हम बढ़ेंगे अदालत फिल्म के गाने के बाद आह फिल्म के गाने की ओर। आह फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में है, हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला है संगीतकार शंकर जयकिशन ने।

0: आग फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, स्वर शमशाद बेगम का था, बेजाद लखनवी के बोल थे, राम गांगुली का संगीत। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ये संदेश।
1: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
2: क्यों?
1: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सलिल चौधरी के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर, फिल्म थी जागते रहो।

शैलेंद्र की रचना आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का स्वर था। फिल्म का नाम रात और दिन। अब आवारा फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है और आवाज लता मंगेशकर की।

जाज फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, नौशाद अली की तर्ज। और अब अगले गाने में भी नौशाद अली की तर्ज है, लेकिन इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, स्वर शमशाद बेगम और साथियों के, फिल्म का नाम बाबुल। यही है आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों के गीत।

बाबुल फिल्म का ये गाना था आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आपने सुने अभिनेत्री नरगिस पर फिल्माए गए फिल्मों के गाने।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो चलिए आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आपको बता दी जाए। आज हमने एक टेक्स्ट पोस्ट किया और वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो भाई, इसी में से हमने कुछ शब्द चुने हैं। अब आपको पहचानने हैं वो शब्द और उनसे जुड़े गीत। देखते हैं हमारी आपकी पसंद कितनी और कहां तक मिलती है। वैसे अभी मैं इस टेक्स्ट को एक बार और पढ़कर आपको बताऊंगी और थोड़ा सा उन शब्दों पे जोर भी दूंगी ताकि आपके लिए और भी सहूलियत हो जाए। आपको बता दें, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, शेफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो भाई, ये धुन बज गई और एक लिसनर हमारी लिखती हैं कि आज लिसनर्स ये भी नोटिस करेंगे कि न्यू प्रोग्राम में बैकग्राउंड म्यूजिक दिल तो पागल है की जगह कौन सा सुनाई देगा। तो भाई, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रोग्राम नया है लेकिन हमारा अंदाज वही रहेगा। एक साथी ने लिखा है कि हम भी एक सुहाने सफर में हैं और रास्ते से कमेंट कर रहे हैं, प्रकृति के बीच विविध भारती का साथ, मधुर संगीत आनंद ही आनंद है। तो चलिए एक बार उस टेक्स्ट को मैं फिर से पढ़ती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहां कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो चलिए, अब आप समझ ही गए होंगे और आज भाई दिल की बातें हो रही हैं तो क्यों ना की जाएं। साथियों, जब बात दिल की हो तो आपको कौन सा गाना याद आता है? वैसे जरा ये तो बताइए कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है।

चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गाने से। हमारी एक लिसनर ने लिखा है कि आपने बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में मौसम के बदलते मिजाज और जज्बातों को बयां किया है। गर्मी की तपिश से लेकर सावन की फुहार तक का सफर वाकई किसी प्रेम कहानी से कम नहीं। यूं तो मौसम का हर रंग एक अलग अलग कहानी है और बारिश की हर बूंद किसी की याद का छोटा सा दर्पण, लेकिन तपती गर्मी में छांव जैसी मुलाकातें ही तो जीवन को सचमुच हसीन बनाती हैं। और आज के इन्होंने शब्द दिए हैं, ठंडी हवा, छुपा, रिमझिम, सावन, इंतजार, कतरा कतरा, पानी, अधूरी कहानी, मौसम, रंग, मुलाकात, पल, धूप, छांव और मुस्कुराहट। क्या बात है भाई, आपने खुद ही इतना प्यारा टेक्स्ट लिखकर भेज दिया।

एक साथी लिखते हैं तो कि आज तो आपकी आवाज में सिर्फ कार्यक्रम को सुना जाएगा, इस तपती धूप में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप कार्यक्रम सुनिए, एंजॉय कीजिए। वैसे साथियों, कुछ साथी हमारे इस नए कार्यक्रम का शय स्वरूप अभी नहीं समझ पाए हैं, और वैसे भी परिवर्तन तो संसार का नियम है। कुछ तो परिवर्तन हर जगह जरूरी होता है। हम अपनी जिंदगी में भी तो परिवर्तन करते हैं ना, तो बस ये परिवर्तन शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन बाद में यही चेंजेस बहुत इजी और बहुत आसान और मनोरंजक हो जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि हैव अ नाइस सैट संडे, और गर्मी चली गई है और यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। शायद इन्होंने कहीं उत्तराखंड साइड की बातें लिखी हैं। और एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत पढ़ने पर 1978 में चौथी कक्षा में पढ़ी हुई एक कविता याद आ गई है। मैं लिख रहा हूँ। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल, रिमझिम बूंदे बरसा बादल, झमझम पानी बरसा बादल, लो घनघोर घटाएं छाई, टप टप टप टप बूंदे आई, बिजली चमक रही चमचम, बिजली चमक रही चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। वाह, क्या खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही एक लिखते हैं कि सुहाने सफर को आज मौसम के रंगों में रंगकर आपके साथ हो चलेंगे और कहेंगे कि धूप में निकला न करो रूप की रानी। और अभी तपती गर्मी, हम राजस्थान से दो बूंद पानी को सहेजते हुए इसी फिल्म का गीत, दो बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं, कुछ बूंदे बारिश की कितनी सुखद एहसास दिलाती है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, और ये सब गीत इन्हें याद आ रहे हैं, और भी इन्होंने गाने लिख भेजे हैं। तो एक साथी ने कुछ गाने लिखे हैं कि आज के शब्द हैं गर्मी, ठंडी हवा, धूप, छांव, रिमझिम बारिश, कतरा कतरा पानी, मौसम वगैरह वगैरह। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, और आज मौसम बड़ा बेईमान है। यकीन मानिए साथियों, गर्मी बहुत प्रचंड रूप धारण कर चुकी है और इतनी तपिश में सभी को शीतलता की जरूरत है, यानी ठंडी हवाओं की। और ये हवाएं हैं ना, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए ना, ये हवाएं ना होती तो क्या होता। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है। फटाफट उसका जवाब दीजिए। और वैसे अब जो गाना आप सुनेंगे, आप में से कुछ साथियों ने वही गाना चुना जो मैंने भी चुना। तो आइए हम ये गाना सुने, साथ साथ आप हमें सवाल का जवाब दीजिए।

ठंडी ठंडी हवा का आनंद देता ये गाना प्रिंस फिल्म से हमने लिया था लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में। और हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। बेहद खूबसूरत गाने से प्रोग्राम का शानदार आगाज हुआ। तो एक सखी ने लिखा है कि दिल तो है दिल मैं लिख रही थी फिर रह गई क्योंकि सब्जी वाला आ गया और भूल ही गई। क्या बात है, लेकिन हमारी और आपकी पसंद मिल तो गई।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसे दिल का कोई एतबार नहीं, वैसे सुरीले सफर में कौन सा गीत आप पेश कर दें कोई नहीं कह सकता। पहला गीत ही हमारी सोच में नहीं था, तो भाई हमारी और आपकी सोच यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा गई। और हमने आपसे पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितने करीब है, तो हमारे ढेर सारे साथियों ने जवाब दिया। एक साथी लिखते हैं, जितना लबों के करीब हंसी है, जितना फूलों के करीब महक है, बस उतना ही दिल के करीब विविध भारती है। एक साथी ने कमेंट में लिखा है कि आज के सुरीले सफर में आप आई हैं, तो भाई आज तो इस सफर का और भी मजा आएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में आप आए, सफर का अंदाज सुरीले गानों से होगा, आप गाने बहुत सुरीले और मधुर बजाने वाली हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज के इबारत के सुलझे अनसुलझे रहस्यों के बीच गानों का मजा है, विविध भारती से दिन शुरू होता है, सुबह की शुरुआत भी विविध भारती के गाने न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनता हूं, विविध भारती को कई पीढ़ी से सुना जा रहा है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मेरे दिल के इतने करीब है कि सुबह 9 बजे जब दुकान का शटर खोलता हूं और बिजली चालू करता हूं, तो पहला स्विच होम थिएटर का होता है जिसके अंदर विविध भारती रेडियो स्टेशन है जो रात को 9 बजे तक चलता है। जब दुकान का शटर बंद होता है तो आखिरी स्विच रेडियो का बंद होता है। वाह क्या बात है। वैसे साथियों आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में जो सुरीला सफर एक कार्यक्रम है, इसमें सवाल जरूरी नहीं कि हम गीतों से या टेक्स्ट से रिलेटेड लें, सवाल कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक साथी लिखते हैं कि सबको नमस्कार करते हुए कि हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में हवा पानी का दौर चल रहा है, मौसम बहुत सुंदर है, गर्मी से बहुत राहत है, तो भाई गर्मी से राहत है तो ठंडी हवाओं का आनंद लेते रहें आप। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आज बहुत ठंडी और तेज हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, तो छाए हुए बादलों का भी आनंद लीजिए। और एक साथी लिखते हैं, भाई हवाएं न होती तो जीना ही मुश्किल हो गया होता। तो दूसरे साथी लिख बैठे हैं कि दिल के करीब नहीं, दिल में है जी विविध भारती। और एक साथी ने लिखा है, आपके साथ सुरीला सफर की शुरुआत होने वाली है और हम सभी इसके लिए बहुत उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए धन्यवाद। एक साथी ने लिखा है, पानी शब्द पर गाना होगा, पानी रे पानी रंग तेरा कैसा, शोर फिल्म का गाना। दूसरे साथी लिखते हैं कि तपती गर्मी में सावन का इंतजार, कतरा कतरा पानी की बूंदें अधूरी कहानी पूरी करती हैं, इस मौसम पर तो ये गाना एकदम फिट बैठता है, रिमझिम गिरे सावन। साथियों रिमझिम बारिश की बूंदें, सोंधी मिट्टी की खुशबू, पहली बारिश का एहसास, सब कुछ बड़ा ही प्यारा लगता है ना। बात रिमझिम शब्द की हो तो एक गाना जो आप सभी पसंद कर रहे हैं वो जहन में आता ही आता है। ये वो गीत है साथियों जिसका फिल्मांकन, जिसके बोल, गीत, संगीत, आवाज हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देती है। तो ये गाना सुनिए और बताइए जरा इस गाने के संगीतकार का नाम।

मंजिल फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर की आवाज में हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देता है। आपका क्या कहना है बताइएगा। वैसे हमारे एक साथी ने लिख भी भेजा है कि चलो मेरी बनी हुई इबादत का एक गीत तो शामिल हुआ फिल्म मंजिल का, रिमझिम गिरे सावन लता दीदी की आवाज में। यहाँ हमारी और आपकी पसंद मेल खा गई। और इस गाने के लिए आप सभी ने लिखा है कि मंजिल फिल्म का गाना अमित अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी मरीन ड्राइव पर बारिश का आनंद लेते हुए। और एक साथी लिखते हैं रिमझिम गिरे सावन योगेश जी का लिखा हुआ ये गाना, सावन और बारिश की बात हो और ये गाना न बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी साथी इस गाने को लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग और एक बड़ी ही प्यारी सी इमोजी बना के भेज रहे हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कुछ इन शब्दों से होकर गुजरेगा, ठंडी हवा रिमझिम सावन इंतजार पानी और मुलाकात। एक साथी ने लिखा है कि सुरीले सफर में शामिल हो रहे सबको नमस्कार भेजा है। लिखते हैं कि शुरू में ही आपको ईमानदारी से मैं कह दूं कि मेरे इम्तिहान के दिन कब के लग चुके हैं, लेकिन जब आपके सफर इस सफर में शामिल होने जा रहा हूं तो लग रहा है कि फिर से इम्तिहान के दिन लौट चुके हैं। खैर ये तो जरूर कहूंगा कि आपकी आज की इबारत इतनी खूबसूरत है कि उसकी इबादत करने की दिल में चाह है, और क्यों न हो, उसमें एक तरफ तपती गर्मी है तो दूसरी तरफ ठंडी हवा है, कहीं रिमझिम सावन है तो इसी मौसम में किसी का इंतजार है। भाई बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। आगे लिखते हैं ये, इंतजार खत्म होने के बाद मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात के इस पल में मुस्कुराहट लेकर हम उससे मिलते हैं तो दिल में भी ये डर रहे कि कहीं कहानी अधूरी न रह जाए। तो कहते हैं आगे कि देखा बातों बातों में मैंने कितना कुछ कह डाला कि सांस फूल रही है। गानों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा ब्रेक के बाद, तो चलिए फिर भी सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट और पढ़ देती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुअन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं, कभी तपती धूप में छांव का एहसास तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो।

हमारे एक साथी लिखते हैं, शुभ दोपहरिया, वेरी गुड आफ्टरनून सुरीला सफर प्रोग्राम में आज दोपहर 1 बजे तपती गर्मी में संडे की छुट्टी के दिन आपके साथ ठंडी हवा की हल्की सी छुअन का बेसब्री से हम सभी श्रोताओं को इंतजार है। तो आपका इंतजार पूरा हो गया, कार्यक्रम चालू है विविध भारती पर। एक साथी ने कुछ गाने लिख भेजे हैं जो रिलेटेड हैं आज के टेक्स्ट से। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रिमझिम गिरे सावन, ये मुलाकात एक बहाना है, अल्लाह मेघ दे पानी दे, इंतजार और अभी गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कड़ी कड़ी, कतरा कतरा पानी है, वगैरह वगैरह शब्द और ये मेरे गीत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी लिखते हैं कि लगभग भारत के बड़े हिस्से में मानसून

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, फिल्म थी जैसे को तैसा। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म मंजिल का गीत जिसे आरडी बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया, चलो पहले तीन गीतों में ये गीत तो हमारी पसंद का आ ही गया, आगे देखते हैं कौन सा गीत हमारा चुना हुआ बचता है। और एक साथी ने लिखा है कि रिमझिम गिरे सावन इस गीत की खासियत है कि ये मेल और फीमेल दोनों ही वर्जन में कर्णप्रिय है, आज के दौर में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।

यकीनन साथियों, गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन फिर भी ऐसे गीत गर्मी से थोड़ी सी राहत तो दे ही देते हैं। एक साथी ने कुछ पंक्तियां लिख भेजी हैं कि गर्मी आई, धूप सुनहरी, आंगन में फैली लू की लहरी, पेड़ खड़े हैं चुपचाप जैसे ढूंढ रहे हों ठंडी पहरी, पसीने की बूंदे मोती बनकर चेहरे पर चमक दिखाती है, पर आम की मीठी खुशबू से मन में ठंडक आ जाती है, गर्मी की ये तपती बेला सिखा जाए धैर्य का खेला। बिल्कुल सच्ची बातें लिख भेजी आपने। गर्मियों से राहत के लिए हम सभी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं कि गर्मी से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन थोड़े से गीत संगीत भी तो ऐसे होते हैं जो हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं, थोड़े से सावन का एक एहसास दिलाते हैं कि हाँ, अब बस सावन करीब है, बारिश करीब है ना। एक साथी लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, मुझे लगता है कि आज के शब्द सावन, तपती गर्मी और मुलाकात हो सकते हैं और इन शब्दों पर कुछ रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती सुनने से बहुत फायदा है, प्रोग्राम का आनंद लेते हुए काम करना, काम में कोई बाधा नहीं होती। और मंजिल फिल्म के गाने के लिए एक साथी लिखते हैं कि नारीमन पॉइंट के किनारे बरसात में मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन भीगते जा रहे हैं और गाना बज रहा है, बरसात पर ऐसा कोई गीत इतना रोमांटिक अभी तक नहीं बना। वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बीते एक सप्ताह से हमारे बिहार के साथ साथ उत्तर भारत का मौसम गीला और शीतल हो गया है, मध्य अप्रैल में जून की गर्मी का प्रवेश हो गया, अभी शीतल पूर्वी के झोंके सुरूर के लग रहे हैं। सच में साथियों, बहुत जरूरी है ऐसे में पानी का बचाव भी करना और जहां तक हो सके हम अपने को हाइड्रेट रखें, भरपूर पानी पी के। और वैसे भी साथियों, पानी के साथ साथ अन्न हो या कोई भी चीज हो, उसका एक एक कतरा हमारे लिए कीमती होता है। कहते हैं ना कि पानी की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है और वो अमृत के समान होती है। तो चलिए, अब आपका मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आने वाला है और हम उस गाने की ओर बढ़ेंगे जिसमें अभिनेत्री रेखा के बड़े ही सहज अंदाज हैं। अब बताना आपको है कि इस गाने में उनके साथ अभिनेता कौन है।

कतरा कतरा मिलती है, आशा भोसले की आवाज में इजाजत फिल्म का ये गाना था। एक साथ ही लिखते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ग्रीष्म की तपन के पश्चात आकाश में बादल छाने लगते हैं, श्वेत शाम बादलों के समूह, और ये संदेश देते हैं जन जन में प्राणों का संचार करने वाली वर्षा ऋतु के आगमन का। आकाश में छाई श्यामल घटाओं के साथ ठंडी ठंडी बयार के साथ झूमती आती है, जन जन को राहत पहुंचाती है जीवन देने वाली वर्षा की पहली फुहार। और वैसे कई जगह पर अब थोड़े थोड़े बादल छाने लगे हैं, आज मुंबई का मौसम भी थोड़ा सा बदला है। एक साथ ही लिखते हैं हमारे प्रांत का मौसम बेहद खुशनुमा है, आज तो सुबह से बादल है और लगता है कि कब रिमझिम जेठ की दोपहरिया बरस जाए। और एक साथी ने लिखा है कि दो अमलतास के पेड़ हमारे घर के फ्रंट पोर्शन के गार्डन में हैं। अमलतास के इन पेड़ों से चाहे बाहर तपती धूप की गर्मी हो या रिमझिम बारिश, और हम उन पेड़ों के नीचे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, या सड़क की तरफ कोई राहगीर इन पेड़ों की छांव में रुक जाए, ठंडी हवा की हल्की छुअन का एहसास कराते हैं ये। बात तो बिल्कुल सही है साथियों की, हम चाहे एसी लगवा लें या कूलर लगवा लें, लेकिन जो आनंद, जो सुकून, जो राहत पेड़ की छांव तले मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। कहते हैं ना कि माँ के हाथ की रोटी का स्वाद और कहीं नहीं मिलता, तो बस वही हाल है पेड़ की छांव का। तो लीजिए भाई, दूसरे साथी लिखते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में से तीसरा गाना बज रहा है, क्या बात है। और सभी ने लिखा है कि कतरा कतरा गाने में नसीरुद्दीन शाह जी थे रेखा जी के साथ। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई क्या बात है, हमारी इबारत का लिखा हुआ दूसरा गीत भी शामिल, इजाजत फिल्म का रेखा जी के साथ, कर्मा फिल्म के खेरू भाई यानी कि नसीरुद्दीन शाह जी, बहुत ही शानदार नशीली दिलकश अमर आवाज, आदरणीय आशा ताई की। एक साथी ने लिखा है आज का सुरीला सफर का प्रोग्राम बहुत लाजवाब। और एक साथी लिखते हैं बहुत प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी पड़ रही है, अभी आसपास मौसम खुशनुमा हो गया है गाने सुन सुन कर। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपका गुड आफ्टरनून भाई बहुत अच्छा लगता है, तो भाई आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड आफ्टरनून। एक कमेंट आया है हमारे साथी लिख रहे हैं कि हमने शब्द तो सही पकड़ लिए हैं लेकिन अभी तक एक भी गीत नहीं मेरी पसंद का आया या मेरे सोचा हुआ आया। तो दूसरे साथी लिखते हैं आपकी इबारत को लेकर मेरे मन में हजारों गीत उमड़ रहे हैं, मैं किस किस गीत का जिक्र करूं, हैरान हूं परेशान हूं, लेकिन दो गाने तो शायद आपको सुनाने ही पड़ेंगे। और इन्होंने लिखा है कि हो सके तो मेरी पसंद जरूर शामिल हो। आगे लिखते हैं हमारे दूसरे साथी कि यहां धर्मशाला में सुबह से बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ों में बर्फ पड़ गई है, पंखों की जरूरत नहीं, सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। यकीनन साथियों, बात मौसम की हो तो हर मौसम अपने में निराला है, खास है। वैसे बारिश के रंग तो अलग ही होते हैं लेकिन प्यार का मौसम हमें हमेशा ही जमा रखता है। कभी इंतजार, कभी मिलन, कभी जुदाई, तो कभी बेईमान सा हो जाता है मौसम। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गाने का जिक्र कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं उस गीत की ओर।

कभी धूप कभी छांव लिए ये मौसम भी कभी कभी बेईमान हो जाता है। बहरहाल मोहम्मद रफी की आवाज लोफर फिल्म का गाना सुना आपने और आप सबको ये गाना बहुत पसंद आया। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि भाई, एक साथी लिखते हैं, लो आ गया मेरे पसंद के चुने हुए गानों का, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो एक साथी लिखते हैं, मौसम कोई भी हो, सुरीला सफर चलते रहना बहुत जरूरी है। और दूसरे साथी ने लिखा है, आज के सुरीले सफर के कार्यक्रम के गीतों से कोटा राजस्थान में भी गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है, क्या बात है। तो यही तो होता है मुलाकातों का असर। एक साथी लिखते हैं, विविध भारती मेरे बचपन का साथी, विविध भारती मेरे वर्तमान समय का साथी, और जब तक प्रभु परमेश्वर ने मुझे जितनी सांसें दी हैं, विविध भारती मेरा साथी रहेगा। एक साथी लिखते हैं कि मैं थोड़ा कोचिंग क्लास में लेती हूं, इसलिए मैं गीतमाला में नहीं जुड़ पाई। आज संडे है, पिछले रविवार शादी में गए थे और प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया है, लेकिन साथ तो है फेसबुक के जरिए। बस इस सफर में ना जुड़ पाऊं, मगर फेसबुक से रेडियो जुड़े रखना मैम, क्योंकि आपके प्रोग्राम से जुड़कर ऐसा लगता है हम आपके साथ ही बैठे हैं और हम रेडियो चैनल और ऑफिस में ही बैठे हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है विविध भारती के साथ जुड़ने में। वाह, तो ऐसे ही विविध भारती के साथ जुड़े रहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अरे वाह, प्लेलिस्ट में से चौथा गीत भी बज गया, आज मौसम बड़ा बेईमान, क्या बात है। भाई हमारी आपकी तो ये जो पसंद है वो मिल गई। एक साथी लिखती हैं कि आपकी आवाज सुनकर, मन स्वर सुनकर मन शांत हो गया, मेरे श्रोता मित्रों की मीठी कमेंट्स मन को सुकून दे रहा है, आज मैं कुछ गुस्से में थी और अब सब ठीक हो गया है, फिर पहले की तरह आनंद लेकर गाना सुन रही हूँ, पॉजिटिव थॉट्स जीवन को जिंदगी से भर देते हैं। तो भाई गुस्सा क्यों, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुस्से को एक साइड में कीजिए और मुस्कुराते रहिए।

लीजिए भाई, हमारी एक साथी ने लिखा है कि अरे वाह, मेरा कतरा कतरा पानी गीत भी मैच कर गया। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि इजाजत फिल्म का जो गीत बजा कि मेरा तीसरा गीत भी आपने शामिल कर दिया, अब स्कोर 5 गीतों पे मेरा तीसरा गीत बच गया है, क्या बात है भाई। तो दूसरे साथी ने लिखा है गुलजार साहब ने इस गीत को एक पेंटिंग जैसा फिल्मांकन किया है। तो दूसरे साथी लिखते हैं कतरा कतरा जिंदगी प्यासी प्यासी रहने दो, मौसम का अद्भुत संगम लिए ये गीत सुरीला सफर को और भी सुरीला बना रहा है। और साथ ही साथियों आपके कमेंट्स भी तो इसे सुरीला बना रहे हैं। तो भाई यही तो असर है विविध भारती के साथ मुलाकातों का। तो आप तो विविध भारती के साथ रोज ही मुलाकात करते हैं, हर दिन आपका खास होता है मुलाकात का विविध भारती के साथ। वैसे आपकी जिंदगी के सुरीले सफर की कोई एक मुलाकात जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और यादगार रही हो शेयर करना चाहेंगे?

एक साथी लिखते हैं कि पेड़ों की छांव का कोई मोल नहीं, कई तपस्वी भी इनकी छाया में मोक्ष पा गए। दिव्यता का स्रोत है ये पेड़, सिर्फ तन की ही नहीं मन की थकन को भी हर लेते हैं ये पेड़।

ये मुलाकातें विविध भारती पर यूं ही होती रहें, हम और आप हमेशा विविध भारती के साथ जुड़े रहें। ढेर सारा शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम का आज का सफर बस यहीं तक। मैं शिफाली आपसे अब लूंगी इजाजत, ढेर सारे धन्यवाद के साथ। आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को, अपने इस कार्यक्रम के सफर को और भी दिलकश खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे साधना फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे में अगला गीत तलाक फिल्म से आशा भोसले की आवाज में कवि प्रदीप के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत तीसरी गली फिल्म से, हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे में आइए सुनते हैं अगला गीत दोस्ती फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं स्वर्ण सुंदरी फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में। भरत व्यास के बोल आदि नारायण राव ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे में भागवत फिल्म के इस गीत को, जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर और साथियों ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सरदार सिंह के संगीत।

फागुन फिल्म का यह गीत सुनने वाले हैं हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलालाबादी के बोल हैं ओपी नैयर का है संगीत।

हम सुन रहे थे परवरिश फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडेकर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जो कि है गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का है संगीत।

हम सुन रहे थे गीत मालिक फिल्म से, शमशाद बेगम की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में बजरूल सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: बाजू।

0: वाले का नाम आड़ी तिरछी चला चला आके झूम आड़ी तिरछी चलाई चलाई आके झूम
1: आड़ी चला चला के झूम तिरछी चला चला के झूम बाजू।

0: यूं ही साथी
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से यह गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे गीत आई मिलन की बेला, फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आज का यह सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। कार्यक्रम शुरू हो मन चाहे गीत, उससे पहले ये छोटा सा संदेश आपके लिए।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ढप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 4।

साथियों, हाजिर हूं मैं शेफाली कपूर आपके मनपसंद कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। आप सभी के पत्रों का बेसब्री से इंतजार है हमें। वैसे आज है संडे, रविवार यानी छुट्टी का दिन। आप में से कुछ साथी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तो कुछ मंडली में बैठकर बातचीत, तो कुछ साथी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर मोबाइल या फिर ट्रांजिस्टर सिरहाने रख के बस इंतजार कर रहे होंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम का। क्यों, है ना? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये है आज का आपका अपना पहला मनचाहा गाना।

यकीन मानिए मनचाहे गीत कार्यक्रम में भी आपके पत्रों से बहार आ जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश पूरी हुई, हमारे इन साथियों ने फरमाइश भेजी थी और फिल्म के नाम जो है वो था जीने की राह। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पसंद हमारे इन साथियों की। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिवानी। श्रीमाली, तो आपकी फरमाइश पूरी हुई। साथियों, आज है दोबारा शुरू हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत का दूसरा दिन, तो फटाफट पोस्टकार्ड पर अपनी पसंद का गीत अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए और इंतजार कीजिए अपने पसंदीदा गीतों के शामिल होने का। बहरहाल अब हम बढ़ेंगे आज के कार्यक्रम में आपकी दूसरी पसंद की ओर, जो है गुनाहों का देवता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद किसकी, हेतु रांची से हमारे श्रोता प्रवीण कुमार की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गुनाहों का देवता फिल्म का ये गाना सुना। अगली फरमाइश किसकी होगी, किस गाने के लिए होगी, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का पंजा
0: 1993 फिल्म साहिबा
2: कैसे जियूंगा
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार
3: नजरों से कह दो प्यार
0: उजाले उनकी याद

0: की 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: काजल है
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। साथियों, अभी तक आप सभी के कुछ ही फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचे हैं, तो भाई जल्दी जल्दी पत्र लिखिए, हमें भी इंतजार है आपके फरमाइशी खतों का। और हाँ, एक बात और, अपना नाम और पता साफ अक्षरों में लिखें ताकि हम आपका नाम और पसंद आपकी साफ साफ पढ़ सकें। तो चलिए अब बढ़ा जाए आज के इस कार्यक्रम के अगले गाने की ओर। और हमारे किन साथियों की पसंद है सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले ये गाना।

0: हम वफा करके भी तन्हा रह गए। निकाह फिल्म से आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज। हसन कमाल ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी। और पसंद किसकी थी ये भी बता दी जाए। इसे पसंद किया था जिला वाशिम वनोजा तांडा मैथून से सानिका राठौर, एस आर टेलर, जय राठौर, सुनील राठौर, इंदुबाई राठौर और कुमार आशीष। और इसी गाने को पसंद किया था ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और अतीक अंसारी। चलिए एक संदेश और सुन लेते हैं, उसके बाद आज के कार्यक्रम का अगला गाना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
0: तो चलिए इस संदेश के बाद बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर। तो बता दी जाए कि ये पेशकश कौन सी है। पापा कहते हैं, हाँ पापा कहते हैं फिल्म का नाम है। उदित नारायण की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और पसंद किसकी? पसंद है हमारे इन श्रोताओं की गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आप सबकी पसंद पर आपका पसंदीदा ये गाना।

0: पापा कहते हैं फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। साथियों, एक से बढ़कर एक आपकी फरमाइशें रहीं। अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक इंस्पेक्टर जनरल का पहला भाग, आज सुनते हैं दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की।
1: अरे आप लोग खड़े रह गए, बैठिए ना।
2: मेयर साहब जी,
1: आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और मैं समझा था कि आप मुझे
3: डॉबचिंस्की, जहां तक मैं सोचता हूँ ये अपने को छिपाए रखना चाहता है। ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं,
4: लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, तभी तो ये खुलेगा।
3: तुम ठीक कहते हो
2: हुजूर, मैं कुछ कहने की दृष्टि
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, मैं अपने को इसी योग्य नहीं।
1: अरे आप कहिए तो।
2: देखिए, मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है,

0: अगर आप वहाँ देखिए कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा, मेरे मन में तो देखिए
1: क्या बात करते हैं, मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार।
0: अब आपसे क्या कहूँ, मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है।
1: मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई।
2: हुजूर ने मुझे याद किया।
3: बिल्ला वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था।
1: मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ कुल कितना बना?
0: जी आप क्यों खामखा परेशान होते, वेटर तुम जाओ पैसे हम पहुंचा देंगे।
3: जी बहुत अच्छा।
0: हुजूर आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे?
1: मुआयना?
0: जी
1: आपका मतलब?
0: शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तरों और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है।
1: आपकी खुशी।
0: डॉक्टर की मैं तुम्हें दो पर्चियां लिख देता हूँ, एक अस्पताल में जमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को दे।
1: जी बहुत अच्छा।
0: आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को दो शब्द लिख दे।
1: जरूर जरूर, पर यहाँ कागज तो होगा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र ना करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है, सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैडीरा की बोतल ठीक रहेगी। डॉक्टर की ये लो, चलिए
1: आसिफ तुम मेरा सामान लेकर आ जाना।
0: हाँ तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हुजूर आइए।
4: ओह इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं। अच्छा डॉक्टर की उसकी उम्र कितनी होगी?
5: उसकी आंखें काली हैं या भूरी?
4: मारिया तू चुप रह।
6: एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी,
4: ये लो मुझे तो
6: लीजिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूँ अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है।
4: मिश्का मिश्का अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
6: लो वो लोग आ गए।
1: जी
6: सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते हैं। दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
0: जी दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है, और एक मैं
6: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया मेयर साहब। सुनिए हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना?
2: जी जी हाँ श्रीमान,
6: लेकिन वहाँ तो बहुत सारी चारपाइयां खाली थी। मेरा मतलब है मरीज थोड़े ही दिखाई दिए।
2: जी बात यह है श्रीमान कि मैं हरचंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है।
0: हुजूर मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए, और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं।
6: आप ठीक कहते हैं, आत्मा का सुखी सच्चा सुख है।
0: जी, जी, जी, जी।
6: इसी आत्मिक सुख के लिए मैं कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ।
7: देखा डॉबचिंस्की, इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है कि ये कितना विद्वान आदमी।
6: मेयर साहब
0: जी
6: आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताश वाश खेलने का शौक नहीं?
0: वाह बेटा मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं अभी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं मुझे कोई शौक वौक नहीं है, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
6: साहब ये तो अपना अपना सोचना है, मैं तो अक्सर ताश की बाजी लगा लेता हूँ।
8: बड़े लोगों के बड़े शौक।
0: अरे इधर आ इधर। ये मेरी पत्नी है एना और ये मेरी बेटी मारिया।
6: तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना।
5: ये हमारा सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन दिए,
6: और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ।
5: आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूँ बहुत बुरा लग रहा है।
6: ध्यान ध्यान ध्यान
1: कहां पीटर्सबर्ग की रौनक और कहां, लेकिन विश्वास कीजिए इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन
2: जी,
1: लेकिन अगर कोई कहाँ तक छिप सकता है बताइए, बताइए बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग फौरन पहचान लेते हैं। देखो देखो देखो, इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्टकोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया था।
4: आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं कि
1: नहीं नहीं।
4: मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं।
1: ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत है, बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं।
4: अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हुआ उपन्यास।
9: पर मम्मी, ला मिसराब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो है।
4: मारिया, तू बीच में मत बोला कर।
1: नहीं नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया, आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं। लेकिन इस नाम के दो उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है।
4: अच्छा।
1: मैडम, आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है।
4: काश हम जा पाते।
1: मैंने तो बंगले को मेहमानों के लिए ही सजा रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम के ठीक बीचों बीच मेज पर क्या रखा है, क्या रखा है, हाँ हाँ हाँ, एक तरबूज रखा है। उसकी कीमत है सिर्फ सिर्फ सिर्फ 700 रूबल।
2: 700 रूबल।
1: मेहमानों के लिए सूप कहाँ से? पेरिस से बंद डब्बों में मंगाया जाता है। हर रात डरद डरद डरद डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिड़ियां आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहां का डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया
2: जी।
1: सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे, सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया।
2: ओहो,
1: मैं जैसे घबरा गया, सोचा मना कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत। हाँ हाँ, जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बना कर रहेंगे। मुझे बहुत मानते, बहुत मानते
10: हुजूर।
1: क्या हुजूर हुजूर लगा रखी है, क्या कहना है
2: जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब
1: आराम
2: जी,
1: आराम। खैर, आराम ही करते हैं। साहिबान साहिबान, खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था।
4: मैं कहती हूँ मारिया, इतना विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता।
9: जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है। बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई।
11: क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चेचे मचानी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है, इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जानती हो है ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है।
4: देखो, जनरल साहब का नौकर आ रहा है। औसिफ, औसिफ
12: जी,
4: क्या साहब अभी सो रहे हैं?
12: जी हाँ।
11: अच्छा ओसिफ साहब को क्या क्या बातें पसंद है, मेरे मतलब वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं?
9: ओसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई?
11: तुम लोगों की बकवास बंद होगी या नहीं? भागो यहाँ से तुम दोनों,
9: हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं।

0: लियानिका, मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं।
1: हो सकता है हुजूर, हो सकता है, खुशी पाकर ही आदमी बड़ा होता है। विश्वास कीजिए, मैं जज, स्कूल सुपरिटेंडेंट और मेयर की तरह नहीं हूँ, जिनका न कोई ईमान है न चरित्र। मुझे यही आश्चर्य है कि ऐसे निकम्मों को सरकार ने भर्ती कैसे
0: की। अच्छा? मुझे इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। आप देखिए, ऐसा कीजिए, एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइए।
1: जरूर।
0: देखिए, यहाँ आते हुए रास्ते में न जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया। अच्छा। अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें।
1: जरूर जरूर, ये लीजिएगा। अच्छा, मैं फिर आपके दर्शन करूंगा।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
2: नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बाबसिंची हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार।
3: श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार।
1: जमींदार?
0: आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए, आपके पास कुछ पैसे होंगे?
2: पैसे?
0: हाँ, अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो।
2: विश्वास कीजिए, मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं।
3: क्षमा कीजिए, मैं तो घर से ही नहीं आया हूँ।
0: कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता हूँ।
2: डॉबचिंस्की, तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही, मेरे पास तो कुल जमा 40 है।
3: मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं।
2: अरे ध्यान से देखो, तुम्हारी बाई जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्तर में ना।
0: अरे अरे, आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ, आप लोग यहाँ किसी काम से आए?
2: जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो, उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं।
3: और इस शहर के पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं।
0: इसमें क्या है, मैं जरूर कह दूं, दो तीन बार कह दूंगा, कई बार कह दूंगा,
3: धन्यवाद
0: श्रीमान,
4: धन्यवाद श्रीमान।
0: कितने गधे हैं ये लोग, मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाँकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपिचकिन को लिख भेजूं, वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूं। प्रिय मित्र ट्रिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूं।
5: मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने आए।
0: उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हूँ तो लेना मत भूलना।
5: बहुत अच्छा मालिक।
0: अरे सुनो से
5: जी,
0: तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो।
5: बहुत अच्छा।
0: कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है।
5: बहुत अच्छा
0: अच्छा, जरा रुको जरा रुको, ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना।
5: बहुत अच्छा।
0: बाकी मिलने पर तुम्हारा हेलस्त को। मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
5: सर।
0: इन दो दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई।
6: मैं आ सकती हूँ?
0: आइए आइए, वो आए हमारे कमरे में, हमारी किस्मत। मिस मारिया, मैं आपकी ही राह देख रहा था।
6: शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, मैंने आकर।
0: मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुध बुध भूल जाता हूँ।
6: सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे?
0: क्यों नहीं, काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता।
6: प्यार? वो क्या होता है?
0: ये भी जान जाएंगी। मेरे नजदीक आइए।
6: हम सीधे साधे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, मुझे जाने दीजिए।
7: मारिया, तू यहाँ, ये क्या बदतमीजी है?
0: मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता, मैं इन्हें जीवन संगीनी बनाना चाहता हूँ।
7: ओह, सुन लिया मारिया, तेरी जाति और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं।
6: मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ।
0: मैडम, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
8: हुजूर, हुजूर, हुजूर, मेरे ऊपर दया कीजिए, शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, उनमें से एक भी सच नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
7: इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना, जानते हैं साहब ने हमारी मारिया का हाथ मांगा है।
0: मूर्ख कहीं की। हुजूर आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, ये तो शुरू से ही मूड मत

0: ही रही
1: पर
0: है।
1: ये सच कह रही हैं। मैं भार्या से विवाह करना चाहता हूँ।
0: हुजूर इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं।
1: मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
2: मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से। इंस्पेक्टर जनरल से। ओ
0: एंटन एंटोनोविच, आज से तेरी दुनिया ही बदल गई।
3: हुजूर गाड़ी तैयार है।
1: हम अभी आते हैं।
0: क्या हुजूर यहाँ से विदा हो रहे हैं?
1: हाँ, वो एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। मेरे चचा बीमार हैं, बस परसों तक वापस आ जाऊंगा।
0: ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है हुजूर इस वक्त आपके पास पैसे कम हो।
1: नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
0: सेवा में कितना पेश कर
1: दूं? आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए।
0: ये लीजिए, एकदम नए नोट हैं।
1: नए नोट, नई आशा। अच्छा मैं चलता हूँ।
4: मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
1: प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया।
0: आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।
1: शुक्रिया शुक्रिया।

ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल, दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, भाग लेने वाले कलाकारों के नाम ब्रजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, आर एच चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, बी एल टंडन, बी आर एल सक्सेना, करतार सिंह पवार और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: कराने नए पुराने।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का तराने नए पुराने कार्यक्रम में।

कराने नए पुराने कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं रेफ्यूजी फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं सोनू निगम, अलका याग्निक की, जावेद अख्तर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत।

0: राम लखन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में सन 1977।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का पंजाबी
0: 1993 फिल्म साहिबा
2: जैसे जियूंगा
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार
3: नजरों से कह दो प्यार
0: उजाले उनकी यादों की 10 मई शाम 4 बजे सिर्फ

0: आता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजों में कृष फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। नासिर फराज ने इसे लिखा था और राजेश रोशन ने इसकी धुन बनाई थी। अब आपको सुनवा रहे हैं तराने नए पुराने कार्यक्रम में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गाना।

है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने, नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत।

0: साजन चले ससुराल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजें थी, समीर ने इस गीत को लिखा था।
1: तराने नए पुराने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती।
4: विविध भारती देश का रेडियो।
5: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेली।
6: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
7: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क।
4: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
8: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
6: विविध भारती पर हर पल है खास।
4: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
9: आज के फनकार।
6: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
10: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
4: विविध भारती संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे आरडी बर्मन और फिल्म का नाम था आगले लक्षा। लीजिए अब सुनिए खिलाड़ी फिल्म का ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें हैं, जतिन ललित का संगीत निर्देशन है। लीजिए सुनिए ये गीत।